इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: Radio Channel।

रेडियो चुनाव 90.4 एफएम जी हम फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनाव के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। मैं हूं चौकसी उस मजदार शोवास, अब मेरी जान से डहट धड़काते रहो।

0: 코너요.
1: 라디오 채널, 라디오 채널, weather update.
2: 스리겐스 여러분들 기다리는 라디오 채널 for brother 아시카 weather.
1: 라디오 채널, 라디오 채널, weather update, weather update.
2: आज का मौसम होने वाला है ऑसम, क्योंकि बादल हट चुके हैं. यस, देयर आर चांसेस कि बादल बरस सकते हैं आज भी, बताएंगे आपको. बट ओवरऑल इज मोस्टली सनी फॉर टुडे.
1: वेदर अपडेट.
2: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस. वही बादल सूरज को घेरेंगे दोपहर होते होते, लेकिन सूरज फायर नहीं वाइल्ड फायर बनकर चमकेगा. देर आर चांसेस कि आज बादल गरज सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. बट ओवरऑल एज आई सेड इट्स सनी फॉर टुडे.
1: रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट.
2: यूवी इंडेक्स अभी के लिए वीक पर ह्यूमिडिटी 82%, विंड स्पीड 0 पर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:39 पर, आज का सनसेट होगा 7:38 पर. What's up show का हिस्सा बनने के लिए 999-04-904 इस द नंबर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. मैं हूं जॉक्स, मेरी जान सिटी हक दरगाह.

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
4: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप।

वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो होता है वायरल हम पहुंचाते हैं अब तक। जी हां, वायरल वेडिंग प्रैंक की बात करते हैं। जाहिर सी बात है आपने सुना होगा इस बारे में क्योंकि ये पोस्ट था वायरल। अब नहीं सुना तो आइए हम बताते हैं क्यों है वायरल। अक्सर इंसान हंसी मजाक और खुशी में लिमिट्स भूल जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ एक वेडिंग पर। दोस्त की शादी पर आए हुए ग्रूममेट्स यानी दुल्हे के दोस्त दुल्हे के साथ मजाक करने लगे, उसे पकड़ा, मारा, घसीटा और मजाक में जब उसे हवा में उछाला तो एक लात उसकी कमर पर जा लगी। और वही एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कि उस

दूल्हे की स्पाइन जो है फ्रैक्चर हो गई और दूल्हा जा पहुंचा हॉस्पिटल। अब वेडिंग हेजिंग कहा जाता है ऐसे प्रैंक्स को, जहां पर दूल्हे के दोस्त दूल्हे को घसीटते हैं और प्यार से मारते हैं। अब मार हल्की फुल्की होती है, लेकिन यहां पर दोस्त जो है अपनी लिमिट भूल गए और अपने दोस्त को घोड़ी नहीं बल्कि बेड पर, हॉस्पिटल के बेड पर चढ़ा दिया। और इंटरनेट पर हो रही है डिबेट कि भैया ऐसा होना चाहिए क्या, क्योंकि अक्सर मजाक इंसान पर बारी पड़ जाता है। रेडियो चला 90.4 FM, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन। वायरल था वो, सब पर आ चुका है। जॉक्स के साथ मजेदार शो, वो सब सिटी हुक मेरी जान, धड़काते रहो।

0: Jesus. कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चनार 90.4 FM हरदल की धड़कन, रेडियो चनार पर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपडेट। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की। आपको बता दे, टोटल जो पिलग्रिम टर्न आउट है सरपास कर चुका है 4.14 लाख मार्क को। वेदर सस्पेंशन होने के बावजूद भी 4.25 लाख के करीब लोग जो आ रहे हैं, और आज भी यात्रियों का जत्था निकल चुका है भगवती नगर जम्मू से। वही अगर हम बात करें आज के वेदर अपडेट की, तो आज अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्री जो वेदर अपडेट एक्सपीरियंस करेंगे, मिनिमम रहेगा 8, मैक्सिमम रहेगा 14। साथ ही दोपहर होते होते देयर आर चांसेस कि आप जो है बारिश और बरसात का सामना भी करेंगे। टीम रेडियो चुनाव 90.4 FM, आपकी यात्रा सफल और संपूर्ण हो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: और दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो सुपर वसुप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है आई एम नॉट अपसेट दैट यू लाइड टू मी, आई एम अपसेट दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई कैंट लीव यू। रेडियो चैनल सिलेक्ट जग सीस के साथ धड़का दे रहा।

0: नाम टीनो जेम्स है। आई होप सब लोग ऑन द सेम पेज। देखो बेसिकली ये
1: भाई प्लीज रहन दे
0: बेटा, ऑडियंस अब अपनी ये ट्रेंड है, ये इन्फॉर्मेशन 100% है क्योंकि मैंने ये लिखा गर्लफ्रेंड है। आगे

क्योंकि टॉपिक अब यहीं पर ही एंड है। उसके पीछे पड़ा जैसे गिर था, पर मैडम के आगे थपेटा। मैं आपस में केमिस्ट्री चाह रहा था, पर भैया उसका तो फेवरेट गणित था। ये लौंडा तुझ पे समर्पित था, पर सब कहते वो साला भ्रमित था। मैं सेड वो पाती थी गिरता, अब जाना वो सब

0: Cheers.
1: एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो मैं हूं आपका साथी जॉक्स दोपहर जो बहि बजान बी आज तुम दस रोजन ये प्रोग्राम जारी जैसे कि होता है मैं दीपा असरा साहिल हम सब जुड़े रहते हैं आपके साथ और यहीं तक नहीं है हमारी पहुंच भैया हम तो कोने कोने में मौजूद है जागने से सोने तक मौजूद है वाह कतई मिर्चा गालिब और खबाई क्या राइम किया माँ कसम बट हाँ पता की बात ये कि आप भी हमारे साथ जुड़े जैसा कि मैंने कहा हर जगह जहाँ जहाँ आप जाएंगे हमें वहाँ पाएंगे पहले आप ऐप डाउनलोड करके आएंगे उसे अपने फ़ोन में लगाएंगे प्ले का बटन दबाएंगे और उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन पाएंगे और साथ ही फॉलो शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर और याद रखिए कमेंट्स में प्यार देना ज़रूरी है रे रेडियो चुनार हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप अब और जोर से धड़काए अपनी बात हम तक पहुंचाए 8899904904 नंबर कॉल कर सकते हैं आप व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज 8899904904 या इंस्टा पर आइए डीएम कीजिए डीएम करने के लिए सर्च करें जॉक ज्यूस JOCKEUS या आप सर्च कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो फिलहाल समीना हमारे साथ जुड़ी है लिखती है समीना जमाना है कमीना मेरे दोस्त मुझे छोड़ के जा रहे ज्यूस मैं क्या करूं अब हालत कुछ इस तरह से है कि शेर अर्ज है कि हालत कुछ इस तरह से है दिले नादान की जो याद रखेगा वही याद रहेगा अगर मैं समीना जी अम पत पे वनुन क्या तेरे क्या कर बो गिविंग आर्म्स टू फायर नाराज दिमा बनना पॉइंट इज कि अगर दोस्त आपका दुश्मन बन रहा है तो वो पहले से ही दुश्मन था दोस्त था ही नहीं अब आप अटैच्ड हैं तो अपने दिल को समझाइए और जिगर कलेजे पर ये जो जख्म लगा है उस पर मरहम लगाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए वैसे मरहम की दवा के लिए रेडियो चुना रहे ना सुनते रहिए धड़काते रहिए आरिफ हमारे साथ जुड़े हैं इनकी बेटी जुमाना और नूर इनके साथ है लिखते हैं आज स्कूल खुल गए हैं वैसे स्कूल से याद है आरिफ क्या याद दिलाए माँ कसम वैष्णव रिश्तेदारों तमाम मातम वाल एसोसिएशन आराम कर एवरीबडी वॉज एक्साइटेड शुरी गकूल बट इट वॉज अ समर ब्रेक और समर ब्रेक हुई भी तो इस तरह कि समर में तो बस स्कूल गई स्टार्ट बारिश है बने समर ब्रेक गई स्टार्ट जबान गई स्लिप समर ब्रेक गई स्टार्ट बारिश शुरू हो गई और जब समर ब्रेक खत्म होने को आई तो लो आज 31-23 से सीधा 31 डिग्री हो गया अब ये है कि रब जी हिफाजत करें नन्हे मुन्ने बच्चों की वैसे अगर ये घर में ना हो तो मज़ा नहीं आता और अगर ये उठ के चले जाए नानके से जहाँ भी मौजूद है मतलब इनके शोर से ही जिंदगी जो है मज़ेदार चटकारे वाली बन जाती है तो फिलहाल आरिफ लिखते हैं कि आज बच्चों का स्कूल शुरू हुआ है और मैंने भी अपनी बिटिया को स्कूल में डाला है बड़ा मिस कर रहा हूँ उसे अब ये तो नहीं कह सकता कि रेडियो सुन रही है या तो मेरा मैसेज सुनिए हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शाम को उनको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि मैं सच में मिस कर रहा था और ज्यूस अंकल ने आपका नाम बताया रेडियो में उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पात पाई क्या उस लिखित ना सन में यूत तेज मतलब ये कत कर मैसेज शॉर्ट बनो वेल रिकॉर्डिंग पे ज्यादा बंद करूँ तथा खतर बे एम के यानी माजरत का फिलहाल पॉइंट ये कि आपने मैसेज रिकॉर्ड की होगी और दोनों बेटियों को अंकल ज्यूस की तरफ से लव यू वक्त हो चला है टॉपिक का लेकिन टॉपिक से पहले बता दूं आपको कि अगर आप भी ख्वाब देखते हैं तो मियां आज का टॉपिक आपके लिए है दोहले खुली आंखों से ख्वाब देखना अब हम इस मुहावरे का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन साइंस हमें बताती है कि ये एक नॉर्मल ब्रेन स्टेट है जहां पर 30-40% दिमाग मतलब जागता रहता है लेकिन ख्वाब भी देखता है ख्यालों को हकीकत बनाने की कोशिश भी करता है और ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है अब इससे क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटल हेल्थ सब पर इफेक्ट पड़ता है सॉरी वन अब वही पात के वन बाय लिंकन बस फिलहाल यहाँ पर ख्वाब का जिक्र आया तो बॉय ने ख्वाब वाला गाना क्यों करके रखा है ख्वाब देख।

के झूठे मोटे अपने झूठे मोटे ख्वाबों को सच बनाइए और हम तक पहुंचाइए आपका ख्याल, इजहार, मोहब्बत, प्यार। बताइए क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी, क्योंकि जाने रेडियो चुनाव 90.4 FM, सुरे हो जासूस के साथ धड़का धड़ा।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

Mustard Radio Channel 90.4 FM up in Joy Kare Mustard Show What's up show mein aur bhi Mustard segments ji ha TikToks and Bollywood news Bollywood se related updates saath hi saath tech ki duniya se bhi updates aap tak pahunchaye jayenge zara sa intezar dete rahe pyar har dil ki dhadkan ko dhadkate raho mere yaar और इस फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स उसके साथ मस्तार शो वो सबसे रिहक्ट मेरी जान दरकाते रहो

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम।

0: News.
1: Kom her, ja.
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: Hasta Radio Channel 90.4 FM Hasta Show. What's up or what's up show ka segment. Bollywood News.
2: Bollywood News.
3: मुझसे शादी करोगी, मतलब मूवी का नाम है मुझसे शादी करोगी, और इसी के चलते 20 साल मूवी ने करे कंप्लीट और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने किया शेयर एक फोटास और मतलब फोटो शेयर किया और फोटो में बताया कि बिहाइंड द सीन्स की ऐसी फोटो जो कभी भी शेयर नहीं हुई, किसी ने भी नहीं देखी। अब मूवी के 20 साल कंप्लीट हो गए और फैंस ने कहा हैं, ऐसा लगता है कल ही आई थी मूवी, और मूवी जो है अपने टाइम की हिट फिल्म है और आज भी लोग इसे देखते हैं। सलमान खान का वो निराला अंदाज और अक्षय कुमार की वो चुलबुली कॉमेडी और वो कुछ टाइम वाला नेगेटिव रोल और अपीयरेंस, मतलब मूवी मसालेदार तो थी, लेकिन पते की बात यह है कि मूवी कर चुकी है 20 साल कंप्लीट और मूवी के ऐसे डायलॉग्स जो आज भी लोगों की जबान पर ठहरे हैं और आज भी नए दौर में जनजी वाले दौर में मीम्स बनकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मुझसे शादी करोगी मूवी का नाम मुझसे शादी करोगी, जिसके कुछ गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM पर। मैं हूं जॉग्स, दरकाते रहो।

0: Kom nou ja.
1: Tech Talks with RC Zeus. The story channel you heard is Frequency, but must that show was a voice of yoga segment, Tech Talks. टेक टॉक्स में आइए बात करते हैं चाइना की। चाइनीज कंपनी ने बनाया है एक रोबोटिक डॉग जो कि हर एक सरफेस पर, हर एक ट्रेन पर कैपेबल है मूव करने के लिए, और कोई भी हर्डल हो ये वहां पर चढ़ सकता है, उतर सकता है और अपनी मूवमेंट जारी रख सकता है। भैया चाइना है तो पॉसिबल है। अब इस पर क्या है आपका विचार? अपने विचारों का आचार हमें भी परोसे। हमें बताइए क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने। 9999 0494 इज द नंबर जो आपके दिलों को हमारे दिलों से जोड़ता है। हॉल फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सिरे हक धड़काते रहो।

0: और चीज़। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

देखिए भूत पुलिस तो नहीं आई पर मैं आ चुकी हूँ ना आपके साथ बातें करने, और कोई भी सवाल जवाब ऐसा नहीं होगा जिसमें आपकी मर्जी ना। आप देखिए मैं सवाल तो पूछूंगी, दिल से पूछूंगी, लेकिन आपको भी सवाल पूछने का मौका दूंगी। हाँ, हम तो डूब ही चुके हैं इस सफ़र के संग, यानी कि ये सफ़र ऐसा है ना कि जो मुझे लगता है कि आपके बगैर अधूरा है। 90.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स और बीट, क्योंकि बस ये है शो

Beats with her.

Beats on repeat. चुनार beats आप enjoy कर रहे हैं on your radio चुनार 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक fun भी हो रहा है और क्या कुछ होगा. अब वही है कि जज्बात हालात ख्यालात है और क्या है, यानी कि और भी क्या है, क्योंकि हर दिन कुछ नया होता है हमारी जिंदगी में. नई नई चीज़ें, नई हसल, हर चीज नया ही नया, यानी कि मजा ही मजा ब्र. अब ये तो हम कहते हैं कि हर दिन मज़ा आना चाहिए, हर दिन कुछ नया होना चाहिए. मंडे के दिन लोगों को क्यों नहीं मज़ा आता, ये भी सवाल है. सवाल जो है ना, इसका जवाब हर कोई जो कहता है ना कि नहीं जी पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता, बट हम पे डिपेंड करता है ना कि मंडे भी तो, अगर मंडे नहीं आएगा संडे भी तो नहीं आएगा ना, अगर मंडे जाएगा नहीं तो सैटरडे भी तो नहीं आएगी. यानी कि एक हर एक दिन का एक अलग ही मज़ा है और मंडे के दिन खुद मज़ा बनाओ. ये सोच लो कि ये भी तो छुट्टी के लिए बस ये दिन जा रहा है, सो इसको वैसे ट्रीट करो. और ज़रूरी है कि हर दिन जब हम कुछ सही सोचते हैं सही होता है, लाइफ में हम सही चीज़ें चुनते हैं, सही डायरेक्शन में ज़िंदगी चलती जा रही है. यस, ढेर सारी बातें होंगी एंड मुझे बताइए कैसा रहा वीकेंड एंड क्या कुछ आपने किया. और सुनने के लिए मैं हूँ बेकरार हमेशा की तरह, क्योंकि आपके साथ ये टाइम गुजारने के बाद मुझे लगता है कि दिस इज़ माय बेस्ट टाइम, जहाँ पर मुझे बात करने का मौका मिलता है. यानी कि कभी कभार लोग हमें कहते हैं चुप हो यार, क्यों इतनी बातें कर रहे हो, पर मैं कहती हूँ आप जितनी बातें करोगे, आप कहते हो कि आप जितनी बातें करोगे हम तो सुनते जा रहे, बस यही तो तालमेल बातों का, यही तो है हमारे जज्बात हालात और ख्यालात. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, शो चुनाव बीट्स. पास धड़काते रहो.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Sorry, me. Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
1: व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक ऐसे इंसान के बारे में जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और उनकी जो भी कोट्स है या फिर जो सीख उन्होंने दिए लोगों को, जैसे कि सक्सेस इज़ नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज़ नॉट फाइनल, नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर। देखिए, अपने आप में ये चीज़ मुझे लगता है सिंपल शॉर्ट है कि हम हमेशा सोचते हैं कि इतना तो ट्राई कर लिया, अब हार जाएंगे शायद। ठीक है, हार भी गए पर मेहनत तो की थी ना, तो उसका मलाल ही नहीं होता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो शायद हमारे लिए बेटर चीज़ें आ रही होती है। और बेस्ट कोई ये चीज़ नहीं सिखा सकता है, सिर्फ एक इंसान, एंड दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड अगर हम अब्दुल कलाम की बात करें तो आज के दिन वो इस दुनिया से चले गए और उनकी डेथ एनिवर्सरी है आज, और पूरा हमारा नेशन जो है उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा है, उनको याद किया जा रहा है, बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, ही वॉज वन ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट जिन्होंने मिसाइल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, और तभी तो उन्हें

करते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। Yes, we are talking about Dr. APJ अब्दुल कलाम और आज उनके बारे में बात होगी शो पे कि क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने किया है अपनी कंट्री के लिए, कैसे उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और कैसे उन्हें याद किया जाता है। आज के दिन हमेशा अभी भी बच्चे कहते हैं कि ऐसा इंसान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899-04904X व्हाट्सएप करके शो में शामिल होकर टॉपिक के रिलेटेड हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल के।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जी हाँ, रह रहे तो हम भी हैं और बराबर 2 बजे तक आपके साथ ही, क्योंकि शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है। आप अपनी फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 करके शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं।

आयशा की रिक्वेस्ट पे ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो टना 90.4 एफएम शो म्यूजिक ऑन डिमांड. अब एंजॉय कर रहे हैं अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899 0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दर्शन की बात हुई है तो 2 बजे किसके दर्शन होते हैं? आहो जी आ गए हैं आपके गली आपको दर्शन देने. दैट इज शो हंगामा शुरू हो गया है ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. 2 से 4 शो हंगामा होता है. एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, बजिंग क्या है और उसके अलावा लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है. सोने सोने गाने प्ले होते हैं और देखिए अभी की बात करें तो शो शुरू होते ही हम प्ले करते हैं कुछ खास, कुछ क्रेजी, कुछ धमाकेदार.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी, वो तो प्ले हो गया, बट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, क्या रीपोस्ट कर रहे हैं, क्या स्टोरीज पे अपलोड कर रहे हैं, व्हाट इज़ ऑन द सोशल मीडिया, बी इट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या हो एक्स।

और देखिए आज एक ऐसा ट्रैक है, सिर्फ सिर्फ ट्रैक नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट की जय जयकार हो रही है भाई। इमरान खान जो कि अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे थे एज कम्पेयर टू, अगर हम म्यूज़िक कॉम्पोजिशन की बात करें, लिरिक्स की बात करें, दे ही इज़ नोन फॉर हिज

जिंदगी में एक बार तो कभी यू हैव टू हैव लाइक ऑनेस्टली सबने जिंदगी में एटलीस्ट एक बार ये गाना तो दिल से गाया होगा, बेवफा बेवफा। इमरान खान के गाने आर नॉट जस्ट लाइक सॉन्ग्स बट लाइक द इमोशंस, चाहे एम्पलीफायर हो, पता चलेगा, बेवफा, ऑल ऑफ दीज ट्रैक्स आर रियली रियली ट्रेंडिंग एंड पीपल लव टू लिसन इट टिल डेट। मैं हूँ आस्ट्रा सुनते रहिए वीडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम एंड बैक टू बैक इमरान खान के गाने बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ क्रेजी हिज सॉन्ग लाइक कलेक्शन इज हाउ द कॉम्पोजिशन द लिरिक्स एवरीथिंग मैं हूँ असरा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: AG the Gangster.
1: She did it.
2: Karo Hangama RJ Asra ke saath.
3: Only on Radio Chunar 90.4 FM.
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. और देखिए, दिस इज द टाइम फॉर डिस्को नहीं बल्कि रेलवे अपडेट. और आज की अपडेट यही है, जो भी लोकल ट्रेन्स है दे आर एज पर द शेड्यूल, बट एक्सेप्ट फॉर वन ट्रेन जो कुछ दिनों के लिए कैंसिल हो गई है, दैट इज 12:37 वाली ट्रेन जो बानीहाल से बड़गाम आती है एंड रीच बड़गाम एट 12:37, देन डिपार्चर्स फॉर बारामूला. सो वो जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है कुछ दिनों के लिए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच. बट अभी के लिए जो बाकी जो लोकल ट्रेन्स हैं वो एज पर द शेड्यूल है, एज पर द समर टाइम टेबल है. And you can avail the summer timetable offline bhi at your respective railway stations. And other than that, aap online bhi download kar sakte hain. And official railway app se, that is Rail One. Chahe train between station ho, live location of the trains, ya aap abhi kis station par present hain, kahan pahunche hain, kitna time lagega next station pe. Even when you are inside the train, you can get any of the information. So ab dekhiye, apna khayal rakhna zaruri hai. सारी की सारी सुविधाएं हैं हमारे लिए, बट इट्स जस्ट दैट कि वी हैव टू बी एंड वी हैव टू प्रूव दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री.
4: सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं. ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे. और कहते क्या,
2: अब देखिए ये दो क्या कहेंगे, बट हम तो यही कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए बड़ी सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ अस्टाउड, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे शो हंगामा। और देखिए, हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं और आपसे भी बात करते हैं कि आपके विचार क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। बट दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899904904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, पर कुछ ही फ्रैक्स से बात बात करेंगे कि आज हम स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

ट्रैकिंग फॉर दिस उर्दी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपीसीटी आगरा ने उन्हें यहां से निकालने का आदेश जारी किया है।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Hi, I'm Asra and you have tuned in to the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM. जो है हंगामा, और जैसे कि मैंने वादा किया था कि कुछ ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करें, और आज एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है, दैट इज़ जब हम नून चाय की बात करते हैं। ठीक है, नून चाय सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ टी नहीं है, जो कश्मीरी यूजुअली जो कश्मीरी है या पहाड़ी रीजन्स में ये कंज्यूम की जाती है नून चाय, पर नून चाय सिर्फ एक टी नहीं बल्कि एक चाय नहीं बल्कि एक इमोशन है, और एक एक हिसाब अगर देखा जाए तो एक टाइम स्टैम्प भी है कि अगर कहाँ कहाँ करें तो करो नून चाय भी, नून चाय जवान तो करो सत्कात, मतलब दीज

आर दे लाइक, वो बोलते हैं ना, वो कॉमन जो डेली लाइफ है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, बट ये चीज़ें हमारे कल्चर, हमारी जो फैमिली रिचुअल्स होते हैं या हमारे जो फैमिली कनेक्शंस होते हैं, उनको और भी ज़्यादा गहरा कर देते हैं। अब देखिए, यूं तो चाय सिर्फ चाय नहीं होती, और यूजुअली अगर देखा जाए तो चाय को बहुत वो दोस्त की तरह माना जाता है कि चाय की टपरी पे जाते हैं, चाय पीते पीते बात करेंगे। एक लव लैंग्वेज है चाय, उसके ऊपर अगर हम बात करें नून चाय की, तो कश्मीरियों के लिए जो नून चाय है, दैट इज़ एन इमोशन, दैट इज समथिंग, अ लव लैंग्वेज, एंड ऑनेस्टली मोर देन लव लैंग्वेज। देखिए, आजकल जब भी चाय की बात आती है ना, तो लेटेंट का चाय की टपरी पे ये गाना तो बिल्कुल याद आता है।

0: तानी। तानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats ve Darje Diva. Radio Chinar 90.4 FM.

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sunar 90.4 FM. और अभी शुरुआत हो चुकी है एक डिफरेंट सेगमेंट की, दैट इज गेम ऑन, जहां हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के अपडेट के बारे में, चाहे लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल हो. और इसके अलावा हम कुछ इंटरनेशनल या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं जो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरू. मैं मस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं।

जमुना पार की तो पता नहीं है, बट रेडियो चिनार पे जो आपका प्यार हमें मिलता है और आपके विचार क्या ही बोले, बट अभी की बात करें तो अभी 4 बजने वाले हैं और हम ही जाना पड़ेगा उस पार। यानी कि 4 बजते ही जमुना पार नहीं बल्कि हम उस पार पहुंच जाते हैं। उस पार का मतलब क्या होता है कि शो ख़त्म हो जाता है और ये वादा ज़रूर है कि कल वापस आऊँगी 2 बजे करने आप सबको एंटरटेन, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट द पॉइंट इज़ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक।

0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

करेंगे। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 91.4 FM.
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल ले
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1

0: 4464 1800 180 7178 1800 180 7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी
1: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: मेरी करता।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
3: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
3: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
4: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
5: Arrest is the latest development in the drug crisis that has been plaguing for the last few years.
4: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
6: दिल को
7: करार आ जाए
6: जब भी आए
7: सुहानी।

0: निशा
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: マネーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पश्चिम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: और बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: था यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।